मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आउंदा, तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

अपने पिता दी गोद विचों बड़ी बेरहमी नाल बड़ी बेदर्दी नाल बाहर खिंच लिया। निमाणा जिहा होके पुछदा, हे मां मैनू इक गल दा पता नहीं लगा, भाई तू राणी है के गोली है।

सतगुरु कहते जे मालिक नू मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। एदे विच को मेर तेर नहीं, कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नू पुछे, छोटे छोटे क्लास विच पढ़ते ने, अजकल ते टाइया टाइया तिना तिना साल दाखिल करवा दिते। कदे किसे दूजे धर्म के बच्चे नू किसे ने पुछा भी तेरा धर्म केड़ा है, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है। ना आपस विच प्यार नाल हसते ने खेड़दे ने। सतगुरु कहिंदे ने जे रब नू मिलना ही ते बच्चे वर्गा पूंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

बैठे दो घड़ियां वास्ते, पर भाई साहब लिखते ने आए संत ब्राह्मणे कीर्तन होवा रहन सबाई।

अपना काम भूल गए। जे राजे की मालिश कर ए ना गया राजा इन सजा देवेगा। परमेश्वर ने आप सहन नाई।

ते राय सोचन लग्या के कितना समा पाके कालू जी दे घर माता त्रिपता दे घर आ लाल पैदा होया सी, लेकिन आज लगदा है कि सब ने इसनू डस लिया। हा वही जाके कोई खबर

सच आख्या सी जदों याद करेगा मैं आवांगा। आ वेखना घर दी की हालत हो गई है, मां ने रो रो के अखां गवा दित्तियां तेरे प्यार। गुरु नानक पातशाह आए आवाज दित्ती, मां माता त्रिपता ने पछाण लिया ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा। गुरु नानक पातशाह ने अगा होके मां नूं मां दे गल ना लगे। माता त्रिपता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलियां तां की वेख्या, चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े। आख्या, बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं, ओ तां जिस वेले रोटी खाउंदे ने एही कहंदे हन कि इस हथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी तां हथ विचों बुरकी डिग पैंदी है। मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए, मैं तां कालू पिता दे चरणां नूं हथ लाया, चरण स्पर्श कीते। पिता कालू ने गल ना ला लिया, बेटा मेरे तो पहले ही राय बुलार नू मिल जेड़ा ओ जंगल विच बन हेठा बैठा है, गुरु नानक गुरु नानक कूक रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठा, की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदा है कदे इस पासे मुंह करके बैठा, सोचदा खबरे इथो ना आ जाऊं फिर सोचदा खबरे दूजे पासो ना आ जाऊं मेरी पिठ ना हो जाए। ताई आ सोच रिया ते पिछे आवाज आई, राय जी असी आ गए। आए गए दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या, सामने गुरु नानक खड़ोता चरना ते डिग पिया। आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी ते सारे हुण एक मन होके जप रहे हन की

जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान। गुरु नानक बाबा नू नजर आया, सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहन। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुनांदे सन, लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी, ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहण लगे मर्दाने आ चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने।

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आउना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने

जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिले विच लोग माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

करके उडरन पंखी। भाई साहब कहंदे ने कोई उडन वाला पंछी बन रहा, कोई बघियाड़ बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर कर

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत सब सानू दसते ने किते जातक नू वेख ले पपीए नू वेख ले जेड़ा स्वाति बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदे सब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति बूंद दे पीछे प्या तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़िया करदा है मेरे पातशाह ते, स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

शिव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावा बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने।

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार दिन तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत भयारे, ये मेरे मालिका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्यामार का कर कृपा मेरे दे।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे आ भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया, भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार होके

भगत अम्बरीक बारे भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच अम्बरीक मोह वर्त है रात पई दुर्बासा आया ए राजा अम्बरीक जिन्हां दे पिता दा नाम नाम भाग सी राजा अम्बरीक दा राज मध्य भारत उड़ीसा वाल सी ए राजा अम्बरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा है राज भी कर रहे है पर नाल भगती भी ए भी भगती तो दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीक की रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई भीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुक्म सी तू अम्बरीक की रक्षा करनी। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भी भरते राजे अम्बरीक ने वर्त रखे पूजा पाठ कराया यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अम्बरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी नेक बड़ा सी दान पुन करके ए राजा अम्बरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी वापस आंदे रस्ते दे विच दुर्बाशा रिखी दा मेल होया। राजे ने दुर्बाशा रिखी नूं नमस्कार कीती पर दुर्बाशा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे हैं। राजा अम्बरीक कहन लगे मैं बिंद्रावन तो आ रहा और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है मेरी इच्छा है। आप जी महलां विच आके चरण पाओ भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्बाशा रिखी कहन लगे ठीक है राजन जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा, ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा ऋषि, चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर व्रत तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा, मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारिया की सलाह से भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी प्यार करते ने, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, ओ सराप देवन नू ताया। जब दुर्भाषा ने देखिया कि इन्हें वर्त तोड़ लिया, तो वह सराप देने वास्ते तैयार हो गया, अखां गुस्से नाल लाल हो गई है। कहन लगा, राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, सराप भी देवांगा। राजे ने कहा, महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होने कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े है, पर दुर्भाषा ऋषि ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म कीता, उस चड़ेल नू जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नू कहा, ए जड़ा राजा अमरीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनू

दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म किया और चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है भगत अमरीक नु मारन वास्ते वधी सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्भाषा रेखी एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म का काम करन लगे पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करते ने चक्र सुदर्शन काल रूप होए पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्भाषा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड़ी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वटी, फिर सुदर्शन चक्कर ने उस चुड़ेल का गला वढ़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्कर दुर्भाषा रिखी के दुआले हो गया। ते दुर्भाषा रिखी जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी ओ हुण इन्ना डर गया, ए भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हां, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नू प्यारी है। तां की होया, बामण पन्ना जीओ लै कि ओ बामण दुर्भाषा रिखी हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण पना जीओ लै रखिया ना हंगण देव सुभाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उहनूं फिर कौन बचावे। ए दुर्भाषा रिखी अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहण लगा इंद्र देवते नूं मेरी जान बचा, पर इंद्र कहन लगा ए मेरे वस की गल नहीं। तो दुर्भाषा रिखी शिव लोक नूं चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे हुण मेरे भी वस की गल नहीं। दुर्भाषा रिखी हुण ब्रह्म लोक नूं गया, तो ब्रह्मा जी कहन लगे तेनू बचाना हुण मेरे वस की भी गल नहीं। ता फिर दुर्भाषा रिखी बैकुंठ नूं चला गया विष्णु भगवान दे कोल। ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मैं भी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने इंद्र लोक शिव लोक तज ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारे पासों इस नूं आसरा जदों ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्भाषा रिखी कि सुदर्शन चक्कर मेरा पिछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन सिख दे सबना समझाया। देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारे ने समझाया है कि दुर्भाषा तू भगत

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन।
1: तुसी टाणी फड़ के पानी च गए से ना?
0: हाँ।
1: केड़े हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तो फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार श्वेखिया सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मपारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जाके लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

0: सूर देख दे,
1: फाट गए ने कागज तुसा दे लेख दे, हार गए तुसानू समझौ दे कल दे, देखांगे तसीरे तुसी किवे नहीं चल दे, आप दिया पंडा ने जलाद बन दे।